Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर आप सुन रहे हैं संगीत माला, और आज का ये संगीत माला आप सुनेंगे मेरे यानी नीपा के साथ. कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ये ब्यूटीफुल वेदर आप सब एंजॉय कर रहे होंगे. और मुझे नहीं पता कि इस वेदर में दो दिन पहले इतनी गर्मी थी कि हम लोगों को लगा कि हमें एसी ऑन करना पड़ेगा. लेकिन आज और कल के दिन आपने देखा ही होगा कि कैसा वेदर था. काफ़ी लोगों ने घर में हीटिंग भी शुरू कर दिया है, तो ये जो गड़बड़ी चल रही है ना, उसके लिए मुझे भी नहीं समझ में आता. लेकिन जो भी है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतनी गर्मी है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ठंड होती है तो हम लेयर्ड अप तो हो सकते हैं. तो कोई बात नहीं, जो भी है बहुत बढ़िया है. और शनिवार का दिन है, सबका मूड अच्छा है, लॉन्ग वीकेंड है, तो आप लोग भी कुछ प्लानिंग्स कर ही रहे होंगे, क्योंकि इतना अच्छा जो आज का वेदर है, तीन दिन तक छुट्टी है, बच्चों के साथ या कहीं के भी कोई ना कोई तो आपका प्रोग्राम आपने डिसाइड किया ही होगा. और बात करें तो कल से हमारे अधिक माह का भी एक पर्व शुरू हो रहा है, जिसे पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं और मल मास भी कहते हैं. तो ये अधिक मास जो होता है, वो जो तीन साल में एक बार वो आता है, और ये जो दिन बचते हैं ना तीन साल में, जो भी बन के पूरा एक अलग सा महीना बन जाता है. तो हमारी पौराणिक स्टोरी ऐसी थी कि जब

इसीलिए ये महीने का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है। इस महीने में हम जितना भी पूजा पाठ दान मंत्र जाप जो भी कर सकते हैं ना, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलता है, और इसीलिए इस महीने को एकदम पवित्र महीना भी कहा गया है। तो आप सब भी जितना हो सके उतना इस महीने में पुण्य का काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। ऐसे भगवान का नाम तो हमें हमेशा से लेना ही है, लेकिन कुछ खास काम करिए। जिसको भी कोई भी आर्थिक परिस्थिति जिनकी अच्छी नहीं होती है उनको हेल्प कीजिए, और बस फल की इच्छा तो हम हमेशा रखते हैं क्योंकि हमारा नेचर ही है, हम मनुष्य जो है तो हमें हमेशा से रहता है कि यार चलो कुछ भी अच्छा हो जाए। तो बस इस महीने में जितना हो सके उतना पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर का भी नाम लेते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं अभी आज के इस प्रोग्राम की। आज जिनका भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, और उनको हमारी तरफ से बर्थडे की और एनिवर्सरी की ढेरों शुभकामनाएं, और जिनको भी अपना मैसेज अपने डियर वंस को भेजना हो तो आप हमारा जरिया ले सकते हैं हमारे स्टूडियो में कॉल करके। हमारे स्टूडियो का नंबर है 3062425002। तो अब बात करते हैं हमारे बॉलीवुड के बर्थडे की। तो इतनी प्यारी एक एक्ट्रेस है जिनका कल बर्थडे था, तो मैं पहले आपको हमेशा की तरह एक गाना सुनाना चाहती हूँ और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं किस आर्टिस्ट के बारे में, किस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाली हूँ।

जी हाँ, तो आपने सुना कि मैं ये जो आपको गाना सुना रही हूँ, इसमें जो हमारी जो एक्ट्रेस है चुलबुली सी, जिसको आप सुन रहे हैं, और अगर आपको और अंदाज़ा चाहिए तो मैं आपको और एक गाना सुनाती हूँ, लेकिन मुझे पता है आपको पता चल गया है। ये जो गाने मैंने बैक टू बैक दो गाने चलाए, उसमें हमारी बॉलीवुड की जो लीगसी है, वो हीरोइन की, वो एक्ट्रेस की, जिनका नाम है माधुरी दीक्षित, लेजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, उनका कल बर्थडे था 15 मई को। तो मुझे मुझे लगा कि चलिए क्यों ना आज माधुरी दीक्षित के ही कुछ गाने हम सुनते हैं, और आपको जो भी गाना अगर उनका पसंद आता हो, या किसी को कोई भी गाना डेडिकेट करना हो, तो प्लीज़ स्टूडियो में कॉल कीजिए। 3062425002 है, और ये हमारी ब्यूटीफुल माधुरी दीक्षित का बर्थडे हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं।

0: पहला पहला प्यार है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित है ही इतनी खूबसूरत, और हमारे बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी 1984 से, जो फिल्म आई थी राजश्री प्रोडक्शन की थी, फिल्म का नाम था अबोध। और बस अबोध फिल्म में उन्होंने काम किया था, लेकिन उससे पहले माधुरी दीक्षित का जन्म जो हुआ था वो मुंबई के महाराष्ट्रियन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखने की शुरुआत कर दी थी, और 8 के 9 साल की थी तब तक उनको कथक की पूरी तालीम उन्होंने हासिल कर ली थी। और छोटी ही उम्र में इतनी एक्सप्रेसिव थी। और देखिए, कोई भी एक्ट्रेस होती है, कोई भी कलाकार होता है, और स्पेशली मैं कहूँगी जो बॉलीवुड में जो हीरोइनें होती हैं या उनको अगर डांस आता हो तो वो जो अपना जो एक्टिंग में वो डांसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको जो भी एक्टिंग करनी होती है तो आप अगर डांसिंग जानते हो, आप क्लासिकल डांसिंग स्पेशली मैं कहूँगी कि उसमें आपको कैसे एक्सप्रेशंस देने होते हैं, कहाँ पे। और बॉलीवुड में तो हम लोग हमेशा से बॉलीवुड म्यूज़िक में, फिल्मों में हमेशा से डांस का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो गाने होते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई डांस सीक्वेंस होता है। तो माधुरी दीक्षित जो ट्रेन क्लासिकल डांसर थी, तो उसी की वजह से उनको बहुत ही एक्टिंग करने में और उनके जो बॉलीवुड के जो गानों में उनकी जो एक्सप्रेशन उन्होंने जो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है अपनी सब फीलिंग्स, और जो गाने को उन्होंने सही तरीके से जस्टिफाई करती है, तो वो बिकॉज उनका जो क्लासिकल बैकग्राउंड था डांसिंग का, उसी की वजह से था। तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: Ever wondered what it would be like to be on a board of directors? Now's your chance. CFCR is accepting applications for the Community Radio Society of Saskatoon's Board of Directors. All current CFCR members are welcome to apply. Become a member today at cfcr.ca/membership. Nominations are open until Thursday, May 28th at 6 p.m. Current members are also entitled to vote at CFCR's annual general meeting in the back room of Amigos Cantina on Thursday, June 4th at 7 p.m. Visit cfcr.ca for more information and to fill out the nomination form.

0: We've got an incredible selection of Birkenstocks with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstocks waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
1: Now all see ladies und see gentlemen, say all ask how und wer, the Broadway Shoe Repair, the Broadway Shoe Repair.
2: Looking for the most sophisticated secret in town? The Venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the Venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair sprung floors. The Venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
3: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
4: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
5: वेलकम बैक टू संगीत माला. जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ. और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं हमारी बॉलीवुड की एलिगेंट, एकदम ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की. तो माधुरी दीक्षित की जो आज मैं आपको बात कहने वाली हूँ, उस उन माधुरी जी के बारे में सबको सब पता होता है, लेकिन जो उन्होंने हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पिछले चार शतक से वो काम कर रही हैं, और बड़ी कम उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करने की शुरुआत कर दी थी. और जब उन्होंने अबोध फिल्म की तो वो फिल्म इतनी कुछ खास चली नहीं थी, लेकिन माधुरी जी को नोटिस तो सब करने लगे थे. उनके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्में की थी, लेकिन कुछ खास वो फिल्में चली नहीं थी. देखिए, आज वो एकदम हिट हीरोइन हम कहते हैं, तो उनकी लाइफ में भी काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि जब कोई नया चेहरा होता है उसको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में वक्त लगता है. लेकिन जब सुभाष घई जी ने माधुरी दीक्षित को एक सेट पे देखा था, तो उन्होंने माधुरी दीक्षित को कर्मा फिल्म के लिए एक आइटम सॉन्ग के लिए उनको साइन किया था. लेकिन जब सुभाष घई ने माधुरी जी को देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये बहुत ही टैलेंटेड हीरोइन है, तो मुझे उसको एक फिल्म में हीरोइन का रोल देना है. तो उन्होंने वो कर्मा में से उनको रोल नहीं दिया, लेकिन कहा कि मैं तुम्हें मेरी फिल्म आ रही है करण अर्जुन, उसमें मैं लॉन्च करूँगा. और लेकिन उसी वक्त जब माधुरी दीक्षित ने तेजाब फिल्म भी ऑलरेडी एन चंद्रा की थी वो साइन कर ली थी, और तब तेजाब फिल्म के रिलीज़ होने के बाद माधुरी दीक्षित जो थी वो रातों रात बन गई थी बिग स्टार. और तेजाब फिल्म का गाना 1 2 3 वो तो हम कैसे भूल सकते हैं, और वही फिल्म के गाने से माधुरी दीक्षित को सब लोग 1 2 3 गर्ल भी कहकर जानने लगे थे. तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ वही तेजाब फिल्म का सुपर हिट गाना, जिस फिल्म के और ये गाने रिलीज होने के बाद माधुरी दीक्षित ने आज तक पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा.
6: जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार.

क्या डांसिंग उनकी स्किल है, क्या डांस कर रही है, माय गॉडनेस। और हमें जो स्क्रीन पर दिखता है कि माधुरी दीक्षित ने इतना इतना अच्छे से माधुरी दीक्षित ने डांस किया है, लेकिन पता है माधुरी दीक्षित जी के इतने सारे हिट गाने जो उनके पास हैं, उनके पीछे उनकी कोरियोग्राफर सरोज खान जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि देखिए, जब फिल्म पे मतलब स्क्रीन पर हम लोग जो गाने देखते हैं, वो गाने हम सिर्फ देखते हैं और लगता है कि वाह कितने अच्छे से उन्होंने इतने डांस किया है, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है। जब माधुरी दीक्षित को क्लासिकल डांसर तो वो थी ही, लेकिन जो स्क्रीन पे जो डांस करते हैं, मूवी के लिए जो डांस करते हैं, उसके लिए उनका कैमरे के सामने कैसे कैमरा को कैसे फेस करना है और कैसे कैमरे के सामने देखकर ही उनको जो भी स्टेप्स करने होते हैं वो उनको समझने में थोड़ा वक्त लगा। तो ये जो फिल्म एक दो तीन, ये फिल्म का जो गाना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो उनको शूट करने में करीबन 30 दिन लगे थे, क्योंकि उनको सीखना था कि कैसे स्क्रीन पे उनको अपने आप को देखना है और किस एंगल से उनको फेस करना है कैमरा। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें थी ना, वो सरोज खान जी ने माधुरी जी को सिखाई थी। सरोज खान जी और माधुरी दीक्षित ने एक साथ इतने सारे हिट गाने दिए हैं और इन दोनों ने एक बात तय की थी। देखिए, आर्टिस्ट कोई कलाकार जो डांसर होता है ना, तो वो उनके गुरु को पता चल जाता है कि या इससे जो भी हम डांस करवा देंगे वो कर लेगी। तो माधुरी दीक्षित इतनी ही फ्लेक्सिबल थी डांसिंग उन वो जानती थी, इसलिए सरोज खान जी और माधुरी दीक्षित की एक बहुत ही अच्छी जोड़ी बन गई थी। और सरोज खान जी और माधुरी दीक्षित ने तय किया था कि जो भी गाना हम करेंगे ना, तो उसमें हमेशा से एक अलग सा हुक स्टेप डालेंगे, हम लोग कोई भी स्टेप है ना रिपीट नहीं करेंगे। तो ये इनकी दोनों के बीच में एक बात हुई थी। और हमेशा से कोई भी गाना आता था तो उन लोग दोनों इतना काम करते थे और अलग अलग नए नए हुक स्टेप्स वो निकालते थे। देखिए, हमें कॉल्स भी आने लगे हैं, मैं बारी बारी सबकी फरमाइश भी सुनाने वाली हूँ। अभी अगला जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, देखिए ये जो गाना है, फिल्म आई थी सैलाब, उसका ये गाना है। और ये गाना सुनना चाहती हैं टोरंटो से प्रीति जी। और देखिए, इस गाने में माधुरी दीक्षित ने सिर्फ एक ही पूरे गाने में एक ही वर्ड बोला है, हमको आजकल है, लेकिन हर एक जो स्टेंजा है उसमें उन्होंने जो अलग किस्म से जो उन्होंने माधुरी दीक्षित से सरोज खान जी ने जो काम करवाया है, मैं आपको वो भी सुनाना चाहती हूँ। और आप लोगों ने ये गाना देखा ही होगा, तो चलिए प्रीति जी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म सैलाब का ये गाना।

देखा ना, मैंने जो आपको कहा, अगर मैं अभी स्क्रीन पर देख रही हूँ और मैं महसूस कर रही हूँ कि क्या उनको उनको इतना ग्रेसफुली उन्होंने इसमें जो डांस किया हुआ है, और ये सिर्फ पॉसिबल है जब डांसर भी उतना ही अच्छे से जो उनके गुरुजी मास्टर जी जो सिखाते हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। और माधुरी दीक्षित इतनी हार्ड वर्किंग है, वो क्लासिकल डांसर होने के बावजूद जब भी कोई भी कोरियोग्राफर अगर माधुरी दीक्षित के लिए कोई भी गाना कोरियोग्राफ करता है तो वो अपना पूरा 100% दे देते हैं। और सरोज खान जी को इसलिए माधुरी दीक्षित उनकी फेवरेट थी, और माधुरी दीक्षित हमेशा यही कहती है कि आज मुझे जो भी गाने मिले हैं उसमें अगर सरोज जी हैं उसी की वजह से मैं अपने इतने अच्छे से स्टेज पर मैं या स्क्रीन के सामने मैं इतने अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हूँ, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हैं वो इतना वर्क करते हैं, हमें तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, ये गाने की शूटिंग हो रही थी, तो वो ये जो महाराष्ट्र में मछुआरे होते हैं ना, तो उसका ये माधुरी दीक्षित इसमें वो ही रोल कर रही थी, स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी, तो वो पूरा कॉस्ट्यूम पहन कर आ गई। और वो महाराष्ट्र जो मछुआरन होती है ना, वो बड़ा सा एक जूड़ा बनाती है और नाक में बड़ी नथ पहनती है, और उनकी टिपिकल साड़ी पहनने की स्टाइल होती है। तो माधुरी दीक्षित जब आ गई तो सरोज खान जी ने कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ लगती है। उन्होंने फिर माधुरी से कहा कि तुम बाल छोड़ दो, खुले बाल रख दो, और अपना जो पल्लू है उसको थोड़ा हटा दो, उसको कमर पर बांध दो। तो इतनी छोटी छोटी जो उन्होंने नोटिस की हुई बातें हैं, और फिर देखिए स्क्रीन पे वो क्या रंग लाती है। तो ये एक्टर तो अच्छा होता ही है, परफॉर्म करता ही है, लेकिन साथ में अगर उनका जो मास्टर होता है, कोरियोग्राफर होता है, वो अगर अच्छे से उनको सिखाते हैं और वही उन लोग जो डांस करते हैं। तो ये एक और एक गाना माधुरी दीक्षित का है, फिल्म थानेदार थी, थानेदार फिल्म आई थी उसमें भी संजय दत्त के साथ में माधुरी जी ने ये जो गाना मैं नेक्स्ट आपको सुना रही हूँ, तम्मा तम्मा लोवे, वो इतना बढ़िया उन लोगों ने कोरियोग्राफ किया है। और संजय दत्त हमें पता है इतना अच्छा डांस नहीं करते थे, लेकिन माधुरी दीक्षित और संजय दत्त और साथ में सरोज खान जी ने इतना अच्छा ये गाना बनाया है। तो चलिए सुनते हैं थानेदार का जो गाना है, तम्मा तम्मा लोवे तम्मा।

तो ये बहुत ही मुश्किल डांस था, और देखिए कितनी मेहनत से इवन संजय दत्त जी ने भी इतना अच्छा इसमें डांस किया है। तो वो यही है कि एक अच्छा कोरियोग्राफर अगर आपको मिल जाता है तो आपको परफॉर्म करने में भी मज़ा आता है और आप वैरायटीज ऑफ सॉन्ग्स कर सकते हैं। और माधुरी दीक्षित ने इतनी सारे फिल्मों में काम किया है, हर फिल्म में अगर माधुरी दीक्षित है तो उनके लिए एक स्पेशल गाना तो रखते ही रखते हैं। और फिल्म आई थी बेटा, अभी फिल्म बेटा में भी ऐसा ही हुआ था कि ये जो अभी गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, धक धक करने लगा, ये गाना सुनना चाहते हैं लंदन से भावेश जी। और ये फिल्म जो बेटा आई थी उसमें ये गाना जो है वो पीछे से ऐड किया गया था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गाना इतना सुपर हिट हो जाएगा। और सेम ये जो बड़े ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने ये जो गाना था वो बनाया था, तो दिन रात मेहनत करके तीन दिन में ये पूरा गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था। और माधुरी दीक्षित ने ये जो गाना का बनाया तो उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट गाना हो गया, क्योंकि लोगों ने इस गाने को इतना पसंद किया, क्योंकि माधुरी दीक्षित जी की जो अदाएँ हैं वो इसमें एकदम उभर कर आ रही है। तो चलिए भावेश जी की फरमाइश पर सुनते हैं, फिल्म आई थी बेटा उसी का गाना धक धक करने लगा, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में।

तो ये भी गाना एक यादगार माधुरी दीक्षित की लाइफ में बन गया है, क्योंकि ये गाना इतना सुपरहिट हुआ था कि जहाँ भी देखो तब यही गाने सब चलते थे। तो माधुरी दीक्षित की अदा, सरोज खान जी की उनकी कोरियोग्राफी और माधुरी दीक्षित के ऐसे बहुत सारे हम लोग गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और एक रिक्वेस्ट आई है, फिल्म आई थी आजा नचले, आजा नचले फिल्म माधुरी दीक्षित ने लंबे ब्रेक के बाद में, वो मतलब शादी होने के बाद वो US सेटल हो गई थी और फिर वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने ये फिल्म की थी आजा नचले। और इसका बहुत ही, ये हम लोग एक क्लासिकल गाना है ओरे पिया, ये गाना सुनना चाहते हैं इंडिया से धनुषी और सास्कटून से ही राजेश जी। तो बहुत ही प्यारा गाना है और गाने की बोल और उनका म्यूज़िक और माधुरी दीक्षित की जो अदा है, तो ये गाना राजेश जी की और धनुषी की फरमाइश पर।

क्या बढ़िया गाना है और क्या डांस किया है अमिताभ बच्चन जी, गोविंदा जी और माधुरी दीक्षित जी, क्या कॉम्बिनेशन है तीनों का। और वैसे देखा जाए तो माधुरी दीक्षित ने सारे ही बड़े बड़े हीरोइन हीरोज के साथ में काम किए हैं, और जैसे शाहरुख खान के साथ किया है, आमिर खान के साथ में काम किया है, दिल थी, फिर बेटा थी, राजा थी, इतनी सारी उनकी फिल्में आई हैं ना कि एक के बाद एक सब उन्होंने हिट गाने हिट मूवीज़ दी थी। और आज तक आज आई थिंक वो 58 ईयर्स की हो गई हैं, लेकिन आज भी उनमें जो ग्रेस है, उनमें जो उनकी जो स्माइल है, उनकी जो अदा है, मैं बोलती हूँ फेमिनिटी इतनी भरी पड़ी है, और वो इतनी हम्बल है, इतनी डाउन टू अर्थ है। और मुझे लगता है कि ये एक क्वालिटी है जो वही क्वालिटी की वजह से वो आज इतनी ऊंचाई पर पहुंची है, क्योंकि उनका जो सबसे मिलजुल कर रहने का नेचर है, और हमेशा से जब भी आप कोई बड़ी मुकाम पर बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हो तो आपका ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है यही वो उनकी जो ग्राउंडेड रहने की जो उनकी जो आदत है उसी की वजह से आज भी वो इतनी ही ब्यूटीफुल लगती हैं। और उनके बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे पता है मैं ही अकेली ऐसी नहीं हूँ, माधुरी दीक्षित तो है ही ऐसे कि उनके काफ़ी दीवाने होंगे। तो एक गाने की रिक्वेस्ट आई है, हमारे सुधीर जी सुनना चाहते हैं फिल्म साजन का गाना, और ये फिल्म भी एक वन ऑफ द सुपर हिट फिल्म रह चुकी है माधुरी दीक्षित जी की। तो चलिए सुनते हैं फिल्म साजन का, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।

एक्टिंग में इतनी नेचुरल वो एक्टिंग करती हैं, और वो हमेशा एक बात कहती है कि यार सब लोग बोलते हैं कि आप इतने नेचुरल हो, इतने आप फ्लोलेसली काम करते हो, लेकिन वो माधुरी जी हमेशा कहती है कि फ्लोलेस दिखने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा ही एक खास क्वालिटी अगर कोई भी आर्टिस्ट में हो तो उनकी जो कामयाबी है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। देखिए बचपन से वो क्लासिकल डांसर है, वो कथक सीखी हुई है, उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, और आज भी वो हमेशा से कोई भी गाने की शूट होती है तो वो सबसे पहले पहुंच जाती है, टाइम पर पहुंच जाती है, और सब साइड आर्टिस्ट के साथ में वो भी खुद इतनी सारी डांसिंग की या वो भी रिहर्सल ज़्यादा करती है क्योंकि वो परफेक्शन में मानती है कि जब भी कुछ भी काम करना है तो उसमें 100% देना ज़रूरी है। तो माधुरी दीक्षित जी ने वैसे बहुत सारे अलग अलग फिल्मों में भी काम किया है, जैसे उनकी एक आई थी फिल्म प्रहार, फिर मृत्युदंड और परिंदा। तो वो उसमें जो प्रहार फिल्म आई थी उसमें उन्होंने बिना मेकअप के, और मृत्युदंड में भी उन्होंने बिना मेकअप के स्क्रीन पर वो आई थी। और जैसे उनके फैंस होते हैं ना, उन्होंने जैसे साजन, जब साजन फिल्म वो उन्होंने साइन की थी तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये क्या तुम साजन फिल्म क्यों साइन कर रही हो, कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, कि संजय दत्त है वो एक्शन हीरो है, उसको इन्होंने हाथ में बोला अपाहिज दिखा दिया है, उसके पैर, उनका पैर टूटा हुआ दिखाया गया है, तो बोले ये फिल्म में तुम कुछ कर नहीं पाओगी, ये फिल्म इतनी नहीं चलने वाली। लेकिन माधुरी दीक्षित को अपने गट्स का पूरा पता था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये साइन करूंगी, और उन्होंने ये फिल्म साजन की थी। और हम सबको पता है साजन 90s की सुपर हिट मूवी में से एक मूवी रह चुकी थी और जिसके सारे गाने एक से एक बढ़कर थे। और ऐसे मैंने कहा मृत्युदंड भी आई थी, मृत्युदंड में उन्होंने एक गांव की लड़की का काम किया था, लेकिन वो वुमन एम्पावरमेंट का पूरा वो प्लॉट था, और वो हमेशा से चाहती है कि लेडीज़ को, वुमेंस को हमें हमेशा से अपना स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप ऐसा, आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर वुमेन नहीं पहुंची है, तो ये मृत्युदंड की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी। फिर गुलाब गैंग आई थी, वो भी उसमें भी उन्होंने बस यही लेडीज़ पावर, वुमेन पावर्स के बारे में बात की थी। और यहां पर एक रिक्वेस्ट अभी आई है, अनीता जी सुनना चाहती है फिल्म परिंदा का बेहद सुरीला गाना है, और ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, और गाने के बोल है तुमसे मिलकर ऐसा लगा। आशा जी और सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गाना पिक्चराइज किया गया है, माधुरी दीक्षित और

तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलकर बेहद बेहद सुरीला और बेहद प्यारा गाना था। और माधुरी दीक्षित जी ने एक उनकी एक फिल्म आई थी जो राजश्री के बैनर तले बनी हुई थी, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और इसी फिल्म के गाने की फरमाइश आई है। ये गाना सुनना चाहते हैं लंदन से जेसिका और पलक। तो ये भी सुपर हिट फिल्म रह चुकी है और आज तक इस फिल्म के सारे गाने सबको बेहद पसंद है और ये फिल्म भी इतनी प्यारी है। और माधुरी दीक्षित ने कहा कि उनका नेचर ही ऐसा है कि ये फिल्म में काम करते हुए उनको लगा ही नहीं जैसे वो फिल्म में काम कर रही हैं। पूरा फैमिली एक परिवार था, उन्होंने इतना इन्जॉय किया था जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी। और उन्होंने कहा मेरा नेचर भी वैसा ही है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तो मुझे भी बड़ा परिवार अच्छा लगता है। तो इसलिए ये फिल्म जो उन्होंने की है वो उनकी एक फेवरेट फिल्म में से एक है। तो चलिए सुनते हैं यही गाना

0: क्या गाने हैं, ओ माय गॉड। माधुरी दीक्षित जी ने इतने सारे अच्छी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म भी एक सबके लिए यादगार फिल्मों में से एक माधुरी दीक्षित की फिल्म रह चुकी है। और ये माधुरी दीक्षित जी ने अभी काफ़ी रियलिटी शो में भी वो जज बनी हुई हैं और वो अभी OTT प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। जैसे उनकी एक वेब सीरीज़ आई थी फेम गेम, फिर मजा माँ, और एक और एक मिसेस देशपांडे करके भी जो एक नई वेब सीरीज़ उनकी आई है, उनका सीज़न 1 आ चुकी है और सीज़न 2 एक आने वाली है। तो उन्होंने वैरायटी ऑफ रोल्स सब किए हुए हैं और उनके जो हंसने का अंदाज़ है, जो मीठी मुस्कान है, वो मुझे वो एकदम मधुबाला की याद दिला देते हैं। हमारी जो लेजेंडरी एक्ट्रेस हुआ करती थी मधुबाला जी, और वो एकदम ही माधुरी जी को देखकर मधुबाला जी की याद आ जाती है। और हम सब तो माधुरी दीक्षित के फैंस हैं ही, लेकिन हमारे MF हुसैन जी जो थे वो भी माधुरी दीक्षित जी के इतने बड़े फ़ैन थे कि उन्होंने उनकी हम आपके हैं कौन फिल्म 67 टाइम्स देखी है। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस कि MF हुसैन जी जैसे बड़े पेंटर, वो माधुरी जी के इतने दीवाने थे कि 67 टाइम्स उन्होंने हम आपके हैं कौन देखी है। और फिर वो उनसे उनकी ब्यूटी से इतने वो उनकी ब्यूटी के इतने दीवाने थे कि उन्होंने एक फिल्म भी बना दी थी, गजगामिनी फिल्म, और उसमें माधुरी दीक्षित के सारे उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। और जब माधुरी दीक्षित जी ने शादी करके US में सेटल होने का फैसला ले लिया था तो वो डेनवर में रहती थी, तो स्पेशली MF हुसैन जी माधुरी जी को मिलने उनके घर गए थे कि उनको देखना था कि जो फिल्मों में इतने अच्छे से काम करती है वो, उनका ये अलग सा रोल एज एन वाइफ, एज अ मदर, वो कैसे निभा रही है। तो वो स्पेशली माधुरी जी के घर गए थे और उनको देखने के लिए कि किस तरीके से वो ये मदर का और वाइफ का और एक हाउस वाइफ का कैसे वो रोल निभा रही है। कि क्या बात है, देखिए कोई दीवानगी भी कोई हद होती है, कि ऐसी भी दीवानी होते हैं लोग कि MF हुसैन जी जैसे लोग उनके इतने दीवाने थे। और वो काफ़ी उनको काफ़ी फिल्मों में अवार्ड्स मिल चुके हैं, कि उन्होंने 6 तो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और उनके 14 से 15 नॉमिनेशन भी हुए हैं फिल्म फेयर के लिए। और 2008 में उनको पद्मश्री से भी सवारा गया था, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। और उन्होंने जो ये फिल्म मजामा बनाई थी वो उसकी स्टोरी पूरी अलग थी। तो वो ये कहती है कि जब भी हम कोई कला, हम लोग जो भी कोई रोल करते हैं और लोग उस रोल को, उस फिल्म में उनके रोल को देखकर वो अपनी आम जिंदगी में उनकी जो प्रॉब्लम है उनसे कनेक्ट होने के बाद, वो जो उनकी लाइफ की सिचुएशन है वो सबके साथ में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने मराठी में भी एक फिल्म बनाई थी, वो बकेट लिस्ट वो उनकी मराठी में उनका फर्स्ट खुद का एक प्रोडक्शन था। तो वो फिल्म में भी उन्होंने बकेट लिस्ट बनाने के बाद में उनको काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए थे कि भई आपकी ये फिल्म देखने के बाद हम लोगों ने भी एक बकेट लिस्ट बनाई हुई है कि हमें क्या क्या हमारी लाइफ में जो करना है, हमारी कौन सी तमन्ना है जो हमें पूरी करनी है। तो माधुरी दीक्षित जी की बातें तो इतनी सारी है, लेकिन आज आपसे बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। जाते जाते मैं और एक गाना प्ले करूँगी और हमेशा की तरह मेरी जो पंच लाइन है मैं कहूँगी कि हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हमें तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना है। आज मैं आपसे यहाँ पर जो बात कर रही हूँ और वो भी उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ICCA के बदौलत हम आपको आज का ये प्रोग्राम आप तक लाए हैं। और थैंक यू हमारे ICCA के, ये जो उनका योगदान है हमारे कम्युनिटी के लिए। तो आप एंजॉय कीजिएगा लॉन्ग वीकेंड और हमेशा से थैंक यू कहिए भगवान को, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए सायोनारा।
1: पान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
3: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
2: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
3: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
2: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: CFCR 90.5 FM, it's the ringing in your head that you can't answer.
1: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर हर शनिवार को इस वक्त आप सुनते हैं हिंदी फिल्मों के गीतों का प्रोग्राम संगीतमाला, और आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नीपा कौशिक के साथ।

0: We've got an incredible selection of Birkenstocks with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstock's waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
1: Now all see ladies and see gentlemen, they all ask how and where. It's a Broadway shoe repair. It's a Broadway shoe repair.
2: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
3: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
4: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
5: वेलकम बैक टू संगीत माला. जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर नीपा कौशिक के साथ, और आज के प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं मदन मोहन जी के गाने. मदन मोहन जी के गानों में मैंने अक्सर देखा है कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं उसमें सितार का उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते थे. तो अब मैं जो आपको ये गाने सुनाऊंगी उसमें सितार की नोट्स आप ध्यान से सुनिएगा, वो आपके रोंटे खड़े कर देंगी. इतनी गहराई से वो सितार बजे हैं. और ये जो सितार वादक है उनका नाम है रईस खान जी. तो मदन मोहन जी और रईस खान जी की साथ में जो जर्नी रही है तो हम उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे. मदन मोहन जी जैसे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उनकी जब पहचान हुई रईस खान जी से, रईस खान जी भी एक बहुत ही अच्छे सितार वादक थे. रईस खान जी और मदन मोहन जी ने एक साथ काम करने की शुरुआत की थी 1963 से, और फिल्म का नाम था पूजा के फूल. और उसके बाद में लगातार उन्होंने एक साथ 26-27 फिल्मों में साथ में काम किया है. और मदन जी के सभी गानों में वो सितार एकदम अलग से स्टैंड आउट करता है, कि अलग से उनको भी इतनी इम्पॉर्टेंट नोट्स दी है. तो मैं आपको सुनाऊंगी पूजा के फूल का लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है.

0: क्या आपको ये निकाह कबूल है?
1: जी कबूल है।
2: जी कबूल है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक मुबारक।
1: कैसे जा जाएगा सर? मैं छुट्टी लेकर जल्दी वापस आऊँ, मेरा इंतजार करोगी?
2: जी।

चला एक ऐसी नज्म कहूं जो लफ्ज कहूं वो हो जाए, बस अश्क कहूं तो एक आंसू तेरे गोरे काल को धो जाए। मैं आ लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तो सो जाए, मैं कागज पर तेरे होंठ लिखूं, तेरे होंठों पर मुस्कान आए, मैं दिल लिखूं तो दिल थामे, मैं गुम लिखूं वो खो जाए, तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए, मैं आह भरूं तो हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तो, फिर बेचैनी का बे काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए, अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए।